मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं 15 साल का प्रचारक में हूँ कर रहा हूँ। बसवार में 9 साल प्रचारक का कार्य किया और अभी बिनिया में 6 साल प्रचारक का काम कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पत्नी का नाम कांता तिर्की है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। बड़ा वाला अंबिकापुर में पढ़ रहा है और मझला रघुनाथपुर में, छोटा बिनिया में पढ़ रहा है। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं।

मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए 3 जगह जाता हूँ। घटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, इधर आरगोती 8 किलोमीटर। मैं ये थैली पकड़ता हूँ तो जब गांव जाता हूँ तो ही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा एक दो पकड़े रहता हूँ।

आने जाते समय कभी कभी पंचर तो कभी वही साइकिल कभी कभी धोखा दे सकती देती है, तो मैं पैदल पहुंच जाता हूँ।

कहीं भी गांव जाता हूं तो लोग जहां जाता हूं वहां तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं।

इसमें अपने कार्य में वही पाप स्वीकार करने के लिए सिखाता हूँ और परम प्रसाद लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। फादर या गांव जाने से पहले मैं उनको प्रार्थना गाना या वहाँ की तैयारी करवाता हूँ और कभी कभी मैं वहीं गांव में वो प्रार्थना करवाता हूँ। या ईश्वर तक वो पहुँचने के लिए अपना मन को बदल सके तो यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सकूँ। मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं एक प्रचारक हूँ।